सुरक्षित र गुणस्तरीय संरचनामा ध्यान दियौं। विकास निर्माण कार्यमा तपाई हामीले अनावश्यक अवरोध नगरौं। सड़क पेटी किनारमा जथाभावी निर्माण सामग्री नराखौं। पूर्वाधार विकास कार्यालय गोर्खा।

0: सुनिए, इन्हें जानते हैं? फादर पीटर दयाल।
1: वो रहे सामने।
2: माय नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन।
3: वेल डन आरव, हमारे इस कन्फेशन वीडियो के हेल्प से कैन इजीली पुट अ स्टे ऑन अ सेंटेंस।
4: तू बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। यू बी अ फ्री मैन सून आरव।
3: सेंड इट मी राइट अवे।
0: जी।
5: द एंटायर विलेज विल बेयर विटनेस टू दिस।
6: आरव, सेंड इट आउट।

0: I just don't get you, Aarav. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरि आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो?
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, तुम देखना, एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।
0: आई डोंट गेट यू मैन।
1: अपूर्वा, गाड़ी रोक।
0: क्या हुआ?
1: स्टॉप द कार प्लीज।
0: व्हाट हैपेंड?
1: खुशबू,

0: हाय बेबी।
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रही मतलब?
1: Means I'm not coming back. I can't.
0: But I love you.
1: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूँ।

0: मुझे कोई रोकने वाले की जरूरत थी बस उस वक्त। थैंक यू माय एंजल।
1: Oh, my son.

0: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
1: सही है सही।
2: मजा ही मजा ब्रो।
0: चलो शुरू करते हैं।

0: गर्मी कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख
1: ऐसे ना तू देख परे दिल क्यों मेरा ब्रेक करे लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे
2: तेरे जैसे जाने कितनों के दर्जकना।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: अलिसा, तिमीलाई थाहा छ नि है म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर। यो कुरा चाहिँ कति राख है।